पद पाया सुख काष्ट हरिया रहाउ। जनन पिता लोक सुत बनता कोय न किस की तारिया, सिर सिर जग संभाहे ठाकुर का हे मन पौ करया। उड़े उड़े आवे से को सांत तिस पाछे बिचरे शरिया, तिन कवन खिलावे कवन चुगावे मन मैं सिमरन करिया। सब निधान दस अठ सिधान ठाकुर करतल धरिया, जन नानक बल बल साध बल जाइये तेरा अंत न पारा वरिया। राग यासा महला चौथा। सो पुरख को अंकार सत गुर प्रसाद, सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हरे गम्मा या गम या पारा। सब त्यावें सब त्यावें तुद जी, हर सच्चे सृजनहारा सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दा तारा, हर त्यावो संतो जी सब दुख विसारण हारा। हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा, तू काट काट अंतर सर्व निरंतर जी, हरे को पुरख समाना। एक दाते एक पेखारी जी, सब तेरे चोज विडाना, तू आपे दाता आपे भुगता जी, हो तुद बिने अवर ना जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख वखाना, जो सेवें तुद जी, जन नानक तन कुर्बाना। हर त्यावें तुद जी, से जन जुग मैं सुख वासी, से मुकत पए जिन हर त्याया जी, तिन तूटी जमकी फासी। जिन निरपो जिन हर निरपो त्याया जी, तिनका पौ सब गवासी, जिन सेवया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी, तेरी भगत भंडार जी, परे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनेक अनेक अनंता, तेरी अनेक करें हर पूजा जी, तप तापें जपें बेअंता। तेरे अनेक पढ़े बहु समर्थ शास्त्र जी, कर करिया खट कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी, जो पावे मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख परंपर करता जी, तुद जे वडे वरना कोई, तू जुग जुगे कोस दास दा तू एको जी, तू निचल करता सोई। तुद आपे पावे सोई वरतै जी, तू आपे करें सो होई, तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सबसे का जानोई आसा महला चौथा। तू करता सियार मैं डासाई, जो तो पावे सोई थीसी, जो तू दे सोई हूं पाई रहा। सब तेरी तू सब ने त्याया, जिसनों कृपा करें तन नाम रतन पाया, गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुझे आप विछोड़िया या मिलाया। तू दरिया ओ सब तुझ ही माँ है, तुझ बिन दूजा कोई ना है, जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल। जिसन तू जानाए सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाने, जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहज ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर न कोए, तू कर कर वेखे जाने सोए, जन्ना ने गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला। तित सरवर डे पहिले निवासा, पानी पावक तने किया, पंकज मोह पग नि चाले, हम देखा तें डूबी अले मन, एक ना चेत समूढ़ मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहा। ना हों जती सती ने पड़िया, मूर्ख मुगदा जन्म पया, प्रणवत नानक तन की शरणा, जिंतु नाही विसरिया, आसा महला पंजवा। पई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोबिंद मिलन की है तेरी बरिया, अवर काज तेरे कित नाकाम, मिल साध संगत भज केवल नाम। सरंजाम लाग पवजल तरण कह, जन्म वृथा जात रंग माया कह रहा, ओ जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साधना जानिया हर राया, को नानक हम नीच करमा, शरण परे की राखो शर्मा, कभी ओ बाच बेनती चौपई।
हमरी करो हादय रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा, तब चरणन मान रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सब तुम कावो, आप हाते मोए बचावो, सुखी बसे मोरो परवारा, सेवक सेख सब करता राम। मोर अच्छा निज कर दया करे, सब अरण को वास करे, पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रहे प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं, सेवक सेखे हमारे तारिये, चौन चौन शत्रु हमारे मारिये। आप हां दे मुझे उबरे, मरण काल का त्रास निवरे, हो जो सदा हमारे पच्छा, श्री हस्तो जो करे और अच्छा। राख ले मोय रखनहारे, साहेब संत सहाय प्यारे, दीन बान दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर दशकंता। काल पाए ब्रह्मा बाप तरा, काल पाए शिव जू अवतरा, काल पाए कर भजन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव की, ओ वेदराज ब्रह्मा जू थियो, जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताए हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैन जशन उपजायो, आदि अंत कै अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारे, सकल प्रजाजने आप सवारी, सिवकन को शिव गुण सुख दियो, शत्रुन को पल मोह बद कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचरे अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक की पीर पछाने, काट काट के पट पट की जाने। जब करख करा करतारा, प्रजा तर तब दे अपारा, जब या करख करत हो कब हूं, तुम मैं मिलत दे तर सब हूं। जेते बदन श्रेठ सब तारे, आपे अपनी बूझ उचारे, तुम सब ही तेरे निरालम, जानत भेद भेद हरि आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद्य नीले नाद्य सांब, ताका मूड उचारत बेदा, जाको पेव न पावत बेदा। ताको कृपा निनुमानत, महामूड किछ भेद ना जानत, महादेव को कहत तो सदा शिव, निरंकार का चीनत न पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, बरणत पिन पिन तुय तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, कहबे सजा प्रथम संसार। एक रूपे अनूप सरूपा, रंक पयो राव की भूपा, अंडज जेरज से ताज कीनी, उत भुज खान बहोर रच दीनी। कहूं फूल राजा हुए बैठा, कहूं समट पयो शंकर कैठा, सगरे सिरिट दिखाए चंपव, आज जुगा स्वरूप से अंपव। आब रक्षा मेरी तुम करो, सेखियो बारे सिख संघरो, दुष्ट जिते उठवा ते उत्पाता, सकल मलेश करो रणकाता। जे अस तुज तव शरणी परे, तिनके दुष्ट दुगत है मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो काल को एक बार ते आए हैं, ताके काल निकट नहीं आए हैं, रचा होए ताए सब काला, दुष्ट वरिष्ठ त्रै तत्काला।

0: दुष्ट साक्ष सके न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फांस ते ताय बारा, जिन नर नाम तिहारो कहा, दार दुष्ट दोख ते रहा। खड़क के तुम्हें शरण तिहारी, आप हां दे ले बारी, सर्व ठवर मोहो सहाय, दुष्ट दोख ते ले बचाई। सवैया पाहे गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आनियो, राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक ना मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सब है, बेद कहे हम एक ना जानियो, श्री स्पान कृपा तुमरी कर, मैं ना कहे हो सब तो बखाने हो। दोहरा सकल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार, बाह गए की लाजवास, गोविंदास तुहार, रामकली महला तीजा, नंद को ओंकार, गुरु प्रसाद। आनंद पया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुरता पाया, सहज से ती मन वजिया, वाधाया राग रतन परवार परियां, शब्द गावने अन्या, शब्दोता गावो हरि के राम, मन जनी वसाया, कहे नानक आनंद हुआ, सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना, अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवारना, सबना गल्ला सम्राट स्वामी, सो क्यों मनो विसारे, कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहिबा क्या नाही कर तेरे, घर तेरे सब किश है, जिस दे सो पावे, सदा सिफत सला तेरी, नाम मन वसावे, नाम जिन कै मन वसिया, वाजे शब्द कनेरे, कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरे, साचा नाम मेरा आधारू, साच नामे आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया, कर शांत सुख मन आए वसिया, जिन इच्छा सब पुजाइया, सदा कुर्बान कीता गुरु विटों, जिस दी आए वडियाइया, कह नानक सुनो संतो, शब्द रूपे आरो, साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच शब्द तित कर सभागे, कर सभागे शब्द वाजे, कला जित कर थारिया, पंच दूत तुद वस कीते, काल कंटक मारिया, तुर करम पाया तुद जिन को, से नाम हर कह लागे, कह नानक ता सुख हुआ, तित कर अन हद वाजे, आनंद सुनो वडभागी हो, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल विसूरे, दुख रोग संताप उतरे, सुने सच्ची बाणी, संत साजन पै सरसे पूरे गुरते जाने, सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर रहया भरपूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। मंदावनी महला पंजवां। थाल विच तिन वस्तु पयो, सत संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सब सुधारो, जे को खावे जे को पुंचे, तिसका होय उधारो, ए वस्त तजी न जाई, नित नित राखुर तारो, तम संसार चरण लग तरिया, सब नानक ब्रह्म पसारो, श्लोक माला पंजवा, तेरा कीता जातो नाही, मैनु जो की तोई, मैं निर्गुण यारे को गुण नाही, आपे तरस पयो, तरस पया मेहरामत होई, सतगुर सज्जन मिलिया, नानक नाम मिले ता जीवा, तन मन थी वै हरिया, तरस पया मेहरामत होई, सतगुर सज्जन मिलिया, नानक नाम मिले ता जीवा, तन मन थी वै हरिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु की पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठे गुरु प्यारे, गुरु सवारे, अति सत्कार योग सतसंगी जनों वट पा गया, जिथे आप जी ने सोता रहरा साहब जी की पावन बाणी के पाठ सरवण किए ने, सेवक परिवार वालों सुखमणी साहब जी के पाठ की रंभता होने लगी, प्रेम अदब सहित बैठ के सरवण करने की कृपालता करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੌੜੀ ਸੁਖਮਣੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਲੋਕ ਏਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਦਿਗੁਰੇ ਨਮਹ ਜੁਗਾਦਿਗੁਰੇ ਨਮਹ ਸਤਿਗੁਰੇ ਨਮਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵੇ ਨਮਹ ਅਸ਼ਟਪਦੀ।
1: ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹਿ ਮਿਟਾਵੋ ਸਿਮਰੋ ਜਾਸ ਬਿਸੰਬਰ ਏਕੈ ਨਾਮ ਜਪਤ ਗਣਤ ਨੇਕੈ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਿਮਰ ਸੁਧਾਖਿਰ ਕੀਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਏਕਾਖਿਰ ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀ ਵਸਾਵੈ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਮੰਗਨੀ ਨ ਆਵੈ ਕਾਂਖੀ ਏਕੈ ਦਰਸ਼ ਤੁਹਾਰੋ ਨਾਨਕੁਨ ਸੰਗ ਮੋਹਿ ਉਧਾਰੋ ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ ਰਹਾਉ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਰਭ ਨ ਵਸੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਖ ਜਮ ਨਸੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਾਲ ਪਰ ਹਰੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਟਰੈ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਤ ਕਛੁ ਬਿਘਨ ਨ ਲਾਗੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਅਨ ਦਿਨ ਜਾਗੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਭਉ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਖ ਨਾ ਸੰਤਾਪੈ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰੰਗ।

थीवै अगन मायो मत परान कनक असव हैवर भूमदान न्योली कर्म करै बहु आसन जान मार्ग संजमत साधन निमख निमख कर शरीर कटावै तो पीहो मैं मैल ना जावै हर के नाम समसर कश नाहे नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे मन कामना तीरथ दे छुटै गर्भ गुमान ना मन ते हुटै सोच करै दिन सर रात मन की मैल ना तन ते जात इस देही को बहु साधना करै मन ते कबू ना बिखिया टरै जल तू वैभव दे अनीत शुद्ध कहाँ एकाची भीत मन हर के नाम की मैं माऊच नानक नाम उधरे पतत बहु मूच बहुत स्याण जम का पहु ब्यापेनक जतन कर त्रिशन ना त्रापै भेख अनेक अगन नहीं बुझै कोट पाव दरगा नहीं सिजै छूट सनाही ऊ प्याल मोह ब्यापे माया जाल अवर करतू सगली जमडानै गोविंद भजन बिन तिल नहीं मानै हर का नाम जब दुख जाए नानक बोले सहज सुभाए चार पदार्थ जे को मांगे साजना की सेवा लागे

सा संग ए हो मैं शुर है। जे को जन्म मरण ते डर है, साध जना की शरणी पर है। जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा, नानक ता कह बल बल जासा। सगल पुरख मैं पुरख प्रधान, साध संग जा का मिटे अभिमान। आपस को जो जाने नीचा, सो गणिय सब ते उच्चा। जा का मन हुए सगल किरीना, हर हर नाम तिन कट कट चीना। माने अपने ते बुरा मिटाना, पेख है सगल सृष्ट साजना। सुख दुख जन सम दृष्टिता, नानक पाप पुन नहीं लेपा।

बलुआ के ग्रेपी तरबसे नांद केल माया रंग रसे दृढ़ कर माने मने प्रतीत काल न आवे मूढ़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महा लोभ ध्रोह याहु जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख लियो आपन कर कर्म तू ठाकुर तुम पै अरदास जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा में सूख नेरे कोई न जाने तुमरा अंत उचे ते उचा भगवंत सगल समगरी तुमरे सूत्र धारी तुम ते हो स्वाग्याकारी तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी सलोक देन हार प्रभ छोड़ कै लाग गया आन सुवाए नानक कहू ना सीजई बिन नावै पत जाए अष्टपदी दस वस्तु ले पाछे पावे एक वस्त कारण बिखूट गवावे एक पीना दे दस पीहर ले तो मूढ़ा कहू कहा करे जिस ठाकुर स्यो ना ही चारा ता को की जय सद नमस्कारा जा कै मन लागा प्रम मीठा सर्व सूगता हूं मन वूठा जिस जाने अपना हुक्म मनाया सर्व थूक नानक तिन पाया अगणत शाह अपनी दे रास खात पीत बरतै नंद उलास अपनी अमान कश बहुर साले अज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीताप ही खोवे बहुर उसका विश्वास ना होवे जिसकी बस्त सागै राखे प्रभ की आज्ञा माने माथे उसते चौगन करे निहाल नानक साहिब सदा दयाल अनक बांध माया के हेत सरपर होवत जान अनेत बिरकि छाया स्यो रंग लावे ओ बिन सहयो मन पछतावे जो दिसै सो चालन हार लवट रहो ता आंद अंदार बटाऊ स्यो ज्यो लावे ने ता को हाथ ना आवे के मन हर के नाम की प्री सुखदाई कर कृपा नानक आप ले लाई मिथ्या तन तन कुटंब सबाया मिथ्या होमे ममता माया मिथ्या रात जोबन तन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या राथ हस्ती अस बस्तरा मिथ्या रंग संग माया पे कस्ता मिथ्या त्रोमो अभिमान मिथ्या आपसी उपर करत गुमान अस्त्र भगत साध की शरण नानक जप जप जीवे हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुने मिथ्या अस्त पर दर्ब को हिरे मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रे रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर बेकार को तावे मिथ्या मन पर लोभ लुभावे मिथ्या तन नहीं पर उपकारा मिथ्या बास लेत बेकारा बिन बूझे मिथ्या सब पहे सफल दे नानक हर हर नाम लये मिर्थी साकत की आर जा साच बिना कहो वसूचा बिरथा नाम बिना तने अंध मुखावत ता कै दुर्गंध मिन सिमरन दिन रहन बृथा बिहाए मेघ बिना ज्यों खेती जाए गोविंद भजन मिन बृथे सब काम ज्यों कृपन के निरार्थ दाम धन धन ते जन जे कट बस्यो हर नाउ नानक ता कै बल बल जाऊ रहत अवर कश अवर कमावत मन नहीं प्रीत मुखों कंडलावत जन नहार प्रभु परबीन बाहर बेख न काहू पीन अवर उपदेश आप न करे आवत जावत जन्मै मरे जिसके अंतर बसै निरंकार तिसकी सीख तरह संसार जो तुम भाने तिन प्रभ जाता नानक उन जन चरण पराता करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना किया आपै माने आपै आप करत निबेरा किसै दूर जनावत किसै बुझावत नेरा पाप सियाणप सगल ते रहत सब किस जाने आत्म

कथा अष्टपदी साधक संग मुख उजल हो सात संग मड़ सगली खोद साधक संग मिटे विमान साधक संग प्रगटे सुगयान साधक संग बुझे प्रमनेरा सा संग सब होतन बेरा साधक संग पाए नाम रतन साधक संग एक ऊपर जतन साधकी महिमा बरने कौन परानी नानक साधकी शोभा प्रमाए समानी साधक संग गोचर मिले साधक संग सदा प्रफुल है साधक संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग हुए सब की रेन साधक संग मनोहर बैन साधक संग न कदहू तावे साध संग स्थित मन पावे साधक संग माया ते बिन साध संग नानक प्रभ सु प्रसन्न साध संग दुश्मन समीत साधु कै संग महापनी साध संग किस्यो नहीं बैर साधक संग न बीगा पैर साधक संग नाही को मंदा साध संग जाने परमानंदा साधक संग नाही उताव साधक संग तजै सबाब आपे जाने साध बड़ाई नानक साध प्रभु बने आई साधक संग न कबहू तावै साधक संग सदा सुख पावै साध संग बस्त गोचर लह साधु कह संग जर सह साधक संग बसै थान उचै साधु कह संग महल पहुचै साधक संग दृढ़ सब धर्म साधक संग केवल पार ब्रह्म साधक संग पाए नाम निधान नानक साधु कह कुर्बान साधक संग सब कुल उधारै साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तारै साधु कह संग सो तन पावै जिस तन ते सब को वरसावै साध संग धर्म राय करे सेवा साधक संग शोभा सुरदेवा साधक संग साधु कह संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन साधक संग श्रव थान गम नानक साधक संग सफल जनम साधक संग नहीं कश काल दर्शन बेड़त होत निहाल साधक संग कलूख तहरै साधक संग नरक पर हरै साधक संग इहा उहा सुहेला साध संग बिशरतर मेला जो इच्छा सोई फल पावै साधक संग न बिरथा जावै पार ब्रह्म साध रुद बसै नानक उदरै साध सुनसै साधक संग सुनु हर नाउ साध संग हर के गुण गाओ साधक संग न मन ते बिसरै साध संग सर पर निस्तरै साधक संग लगै प्रम मीठा साधु कै संग कड़ कड़ डीठा साध संग पै आज्ञाकारी साध संगत पई हमारी साधक संग मिटे सब रोग नानक साध भेटे संजोग साधकी महिमा बेद न जाने जेता सुने तेता बखियाने साधकी उम्मा ते गुण ते दूर साधकी उम्मा रही भरपूर साधकी शोभा का ना ही अंत साधकी शोभा सदा बेअंत साधकी शोभा उचते उची साधकी शोभा मूचते मूची साधकी शोभा साध बन आई नानक साध प्रभेद न पाई श्लोक मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेखै एक सिमिन कोए नानके लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल लेप ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सूर सर्ब कौशोक ब्रह्म ज्ञानी कै दृश्य समान जैसे राज रंग को लागे तुल पवान ब्रह्म ज्ञानी कै धीरज एक ज्यों बसदा को खुद है को चंदन लेप ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ नानक ज्यों पावक का सहस पाओ ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जला ब्रह्म ज्ञानी कै मन होए प्रगाश जैसे धर उपरे आकाश ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र शत्र समान ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा मन अपने है सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन पहे नानक जिन प्रभाव करे ब्रह्म ज्ञानी सगल कीरीना तुम रस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया ब्रह्म ज्ञानी ते काश बुरा ना पया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी एक उपरास ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाहा ब्रह्म ज्ञानी परोपकार महा ब्रह्म ज्ञानी कै नाही तंदा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा ब्रह्म ज्ञानी कै होए सुफला ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार ब्रह्म ज्ञानी कै एक रंग ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परिवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सजागत ब्रह्म ज्ञानी अहं भूत त्यागत ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता, ब्रह्म ज्ञानी कह होए चिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जिस करै प्रभ आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइए, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर नानक, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर।

ब्रह्म ज्ञानी का कथिया ना जाय अदाखिर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीव नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी श्लोक, उतारे जो अंतर नाम शर्म पेखे भगवान, निमख निमख ठाकुर नमस्कार, नानको अपर सगल निस्तार है, अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस मन में प्री निरंजन दर्श, परते रूप न पेख नेत्र, साध की टैल संसंग हेत कर न सुने काहू की निंदा, सबते जाने आपस को मंदा, गुर प्रसाद बिखिया पर हर मन की वासना मन ते टर, इंद्री जित पंच दुख ते रहत, नानक कोट मदे को ऐसा परस, वैष्णो सो जिसो परसो प्रसन्न, बिशन की माया ते हो भिन्न, कर्म करत हो वह ने कर्म तिस वैष्णु का निर्मल, धर्म काहू फल की इच्छा नहीं बांचे, केवल भगत कीर्तन संग राचै, मन तन अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होत कृपाल, आप दृढ़ेवरा नाम जपावे, नानको वैष्णु परम गत पावे, भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्याग दुष्ट का संग, मन ते बिन सह सगला परम कर पूजे, सगल पार ब्रह्म सा संग, पापा मलख होवे, तिस भगवती की मत उत्तम होवे, भगवंत की टहल करे नितनीत, मन तन अर्पै बिशन प्रीत, हर के चरण हृदय बसावे, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे, सो पंडित जो मन प्रभु दय राम नामा तुम मैं, सो दय राम नाम सारस पीवे, उस पंडित का उपदेश जग जीवे, हर की कथा हृदय बसावे, सो पंडित फिर जो न आवे, वेद प्राण सिमृत बूझे मूल, सुख मैं जाने स्थूल चौ वरना को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा देश, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौ वरना मैं जपे को नाम, जो जो जपे तिसकी गत होए, सा संग पावे जन कोए, कर कृपा यंत्र उतारे, पाश प्रेत मुग्ध पाथर को तारे, सर्व रूप का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम, काहू जुगत कितै न पाइय धर्म, नानक तिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म, जिसके मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत रामदास, आत्म राम तिस नदरी आया, दास संतन पाए तिन पाया, सदा निकट निकट हर जान, सो दास दरगाह परवान, अपने दास को आप कृपा करे, तिस दास को सब सोजी परे, सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक रामदास, प्रभु की आज्ञा तमितावे, जीवन मुख सु कहावे, तैसा हरक तैसा उसोग, सदा नानता नहीं बेयोग, तैसा स्वर्ण तैसी उसमाटी, तैसा मृत तैसी बिखाटी, तैसा मान तैसा मान, तैसा रंग तैसा राजान, जो व्रता ऐसा ही जुगत नानको पुरख ही है, जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाऊं, जित जित कर राख है तैसा तिन नाऊं, आपे करन करावन जोग प्रपावे, सोई फुन होग, पसरिवाप अनंत रंग लखे न जाए, पार ब्रह्म के रंग जैसी मत दे, तैसा प्रगाश पार ब्रह्म करता बनाश, सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक भय निहाल, श्लोक उस्तत करें अनेक जानंत न पारावार, नानक रचना प्रवृचि बहुविद अनक प्रकार, अष्टपति कई कोट हुए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट पे तीर्थवासी, कई कोट मन प्रमय उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट चपी श्रोते, कई कोट आत्म ध्यान तारे, कई कोट कव का विचारे, कई कोट नवत नाम त्यावे, नानक करते का अंत न पावे, कई कोट पे मानी, कई कोट अंध ज्ञानी, कई कोट कृपन कठोर, कई कोट पेगा आत्म निकोर, कई कोट पर दर्व कोहरे, कई कोट पर दुख न करें, कई कोट माया श्रम आए, कई कोट प्रदेश परमाए, जित तितला उत तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राज रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प पाए, कई कोट पाथर बिरख निपजाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भू मंडल, कई कोट ससिर सूर नखत्र, कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र, सगल समगरी अपने सूत धारे, नानक जिस जिस भावे तिस तिस निस्तारे, कई कोट राजस्थान सात, कई कोट वेद प्राण सिमरत शास्त्र, कई कोट की रत्न समुद, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट की चिर जीवे, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे, कई कोट जख्य किन्नर पिशाच, कई कोट भूत प्रेत सूकर मिर्गा, सबते निरह समूह ते दूर, नानक आप लिप्त रहा भरपूर,
कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक स्वर्ग निवासी, कई कोट जन्म जीवे मरे, कई कोट बोजो नहीं फिरे, कई कोट बैठती खाएं, कई कोट काले थक पाए, कई कोट कीर्तनवंत, कई कोट माया मैं चिंजा जा भाणा ता ता राखे, नानक सब किश प्रभ के हाथे, कई कोट पहे बैरागी, राम नाम संग तिन लिव लागी, कई कोट प्रभ को खोजन ते आत्मै पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रभ प्यास तिन को मिल्यो प्रभ विनाश, कई कोट मांगै सत संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिन को होय आप सो प्रसाद नानक तेजन सदा धन धन, कई कोट खाणी अरखंड, कई कोट आकाश ब्रह्मांड, कई कोट होय अवतार, कई जुगत कीनो विस्तार, कई बार पसरे पसार, सदा सदा एक एक अंकार, कई कोट कीने भांत प्रभति होय, ब्रह्मा इस माता कंत न जाने कोई आपे आप, नानक प्रभु सोई, कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन होवते आत्म प्रगाश, कई कोट तात के बेते सदा निहारे कोने त्रे, कई कोट नाम रस पीवे अमर पहि सा सद ही जीवे, कई कोट नाम गुण गावे आत्मरा सुख सह समावे, अपने जन को सा सा समारे, नान कोई परमेश्वर के प्यारे सलोक, करण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोए, नानक तिस बलिहार न जल थल मैयल सोए, अष्टपदी करण करावन करने जोग, जो तिस भावे सोई होग, खिन मैं थाबु था पनहारा, अंत नहीं किश बारा बारा, हुक्मे तार तार रहावे, हुक्मे उपजे हुक्म समावे, हुक्मे उतनी व्यवहार, हुक्मे अनक रंग प्रकार, कर कर देखे अपनी वड्याई, नानक समय रह समाई, प्रभावे मानुगत पावे, प्रभावे ता पाथर तरावे, प्रभावे बिन शास्ति राखे, प्रभावे ता हर गुण पाखे, प्रभावे ता पद उधारे, आप करे अपन बिचारे, दुआ श्रेया का आप सुमामी, खेले बिकसे अंतर जामी, जो पावे सोकार करावे, नानक दृष्टि अवर नावे, कहो मानुक ते क्या हुए आवे, जो तिस भावे सोई करावे, इसके हाथ हुए ता सब किसले, जो तिस भावे सोई करे, अनजानत बिखिया मैं रचे, जी जानता अपना बचे, परमे भूला दा दिशतावे, निमुख माए चार कुंट फिरे आवे, कर कृपा जिस अपनी भगत दे, नानक तेजन नाम मिले, खिन मैं नीच कीट को राज पार, ब्रह्म गरीब नवाज, जा का दृष्ट कशु न आवे, तिस तत्काल दश दृष प्रगटावे, जा को अपनी करे बख्शीश, ता काले खाना गने जगदीश, जियो पिंड सब तिसकी रास, कड़ कड़ पूर्ण ब्रह्म प्रगास, अपनी बनता बनाई, नानक जीवे देख बढ़ाई, इस का बल नाही इस हाथ, करन करावन सर्व को नाथ, आज्ञाकारी बपुरा जियो, जो तिस भावे सोई फुन थियो, कबू ऊंच नीच में बसै, कबू सो घर खरा गसै, कबू निंचिंत बिहार, कबू आकाश प्याल, कबू बेता ब्रह्म विचार, नानका मिलावन हार, कबू नृत करे बहुत, कबू सोए रह दिन रात, कबू महा क्रोध बिकराल, कबू सर्व की हो तरवाल, कबू होए बह बड़ राजा, कबू पेखारी नीच का साजा, कबू आप कीरत में आवे, कबू भला भला कहावे, ज्यों प्रभ राखे तिम ही रहे, गुर प्रसाद नानक सच कहे, कबू होए पंडित करे बखियान, कबू मोन धारी लावे ध्यान, कबू तट तीर्थ स्नान, कबू से साधक मुग्ञान, कबू कीट हस्त पतंग हुए जिया, अनक जोन परम प्रमीहा, नाना रूप ज्यो स्वांगी दिखावे, ज्यो प्रभ भावे तिमे नचावे, जो तिस पावे सोई होए, नानक दूजा वर न कोए, कबू सा संग ति पावे, उस स्थान ति बौर नावे, अंतर होए ज्ञान प्रगाश, उस स्थान का नहीं विनाश, मन त नामृत एक रंग, सदा बसे पार ब्रह्म कै संग, ज्यो जल मैं जला इकटाना, त्यों ज्योति संग जो समाना, मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभ कै सद कुरबान सलोक, सुखी बसै मसकीनिया, आप निवार तले, बड़े बड़े अहंकारिया, नानक गर्भ गलेष्ट पदी, जिसके अंतर राज मान, सो नरक पातियो सुवान, जो जाने मैं जो बनवंत, सो बुद्ध विष्टा का जंत, आपस को क्रमंत खावे, जन्म मरे बोजून प्रमावे, तन भूम का जो करे गुमान, सो मूर्खंदा ज्ञान, कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे, नानक इहां मुक्ता कै सुख पावे, धनवंता होए कर गरबावे, तृण समान का संग न जावे, बौलिश कर मान खूपर करे आस पल।

0: जी जब लग मुह मगन संगमाए तब लग धर्म राय दी सजाई। प्रभु कृपा ते बंधन टूटे गुर प्रसाद नानक हों छूटे। सहस खटेला कुड़ तावै तृप्त न आवै माया पाछै पावे अनक भोग बिख्या के करे। ना तृप्त आवै खाप खाप मरै बिना संतोख नहीं। कू राज स्वप्न मनोरथ वृथि सब काजै। नाम रंग सर्व सुख होए बिड़ भागी किसे प्राप्त होए। करन करावणे आपे आप सदा सदा नानक हर जाप। करन करावन करने हार इसके हाथ कहाँ विचार। जैसी दृष्ट करे तैसा हो आपे आप आप प्रभ सोए। जो किश की नो सो अपने रंग सब ते दूर सबू कै संग। मुझे देखे करे बबेक आपे एक आपे अनेक। मरे न बिन सह आवे न जाए नानक सदी रह समाये। आप उदेश समझे आप आपे रचिया सब के साथ। आप कीनो आपन विस्तार सबका शुष्का करने हार। उस ते पे न कहो किश हुए थान थनंतरे कैसोए। अपने चलताप करने हार कौत करे रंग पार। मन में आप मन अपने माय नान कीमत कह न जाए। सा सा सत प्रभ स्वामी गुर प्रसाद किने वखियानी। सा सा सा सब कीना कोट मदे किने बिरला चीना। भला भला भला तेरा रूप आ सुंदर पार अनूप। निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी खड़ खड़ सुनी श्रवण बखियाणी। पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत श्लोक। संत शरण जो जन परै सो जन उदर नहार। संत के निंदा नानका बहुर बहुरे अवतार। अष्टपदी संत का दुख नार जा कटै। संत का दुखन जम ते नहीं छुटै। संत का दुखन सुख सब जाए। संत का दुखन नरक में पाए। संत का दुखन मत होए मलीन। संत का दुखन शोभा ते हीन। संत के अति को रखे न कोए। संत का दुखन थान प्रष्ट होए। संत कृपाल कृपा जी करे नानक। संत संग निंदक पी तरे। संत के दुखन ते मुख पवे। संतन कै दुखन काग जून लवे। संतन कै दुखन सर्प जून पाए। संत कै दुखन त्रिग जून करमाए। संतन कै दुखन तृष्णा में जले। संत कै दुखन सबको शले। संत का दुखन ते सब जाए। संत का दुखन नीच नचाए। संत दुखी कथाओं को नाहे। नानक संत पावै ता होए पीगत पाए। संत का निंदक मां ताई। संत का निंदक टिकन न पाई। संत का निंदक मां त्यारा। संत का निंदक परमेश्वर मारा। संत का निंदक राज तेहीन। संत का निंदक दुखी अरदीन। संत के निंदक को सर्व रोग। संत के निंदक को सदा बिजोग। संत की निंदा दुख मैं दुख। नानक संत पावै ता उसका पी हुई मोख। संत का दुखी सदा पवित। संत का दुखी किसै का नहीं मित। संत के दुखी को डान लागै। संत के दुखी को सब त्याग। संत का दुखी मांग कारी। संत का दुखी सदा बिकारी। संत का दुखी जन्म है मरै। संत की दुख ना सुख ते टरै। संत के दुखी को ना ही ठाऊ। नानक संत पावे ता ले मिलाए। संत का दुखी अदबी ते टूटै। संत का दुखी कितै का दिना पहुंचै। संत के दुखी को ध्यान परमाई। संत का दुखी उजड़ पाई। संत का दुखी अंतर ते थोथा। जो सास बिना मृतक की लोथा। संत के दुखी की जड़ किश नाहे। अपने बीज आपे ही खाए। संत के दुखी को वर्ण राख नार। नानक संत पावे ता ले उबार। संत का दुखी ऊं बिल लाए। ज्यों जल बिहूण मछली तड़फड़ाए। संत का दुखी भूखा नहीं राजै। ज्यों पाव गिदन नहीं त्रापै। संत का दुखी छुटै केला। ज्यों बुआड़ तेल खेत माहे दुहेला। संत का दुखी धर्म ते रहत। संत का दुखी साधु मिथ्या कहत। कृत निंदक का तुर ही पया। नानक ज्योतिष भावै सोई थिया। संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए। संत के दुखी को दरगाह मिले सजाए। संत का दुखी सदा सहकाई। संत का दुखी ना मरे ना जिवाई। संत के दुखी की पूजन आसा। संत का दुखी उठ चला निराशा। संत का दुख न त्रिष्टै कोई। जैसा भावै तैसा कोई होए। पया कृत न मेटै कोई। नानक जाने सच्चा सोई। सब कर तिसके उकर नैहार। सदा सदा तिसको नमस्कार। प्रभु की उस्त करो दिन रात। तिसे त्याहु सास ग्रास। सब कुछ वरतै तिसका किया। जैसा करे तैसा कुथिया। अपना खेल आप करने हार। दूसर कौन कहे विचार। जिसनों कृपा करे तिस आपन नाम दे बड़ पाके।
1: नानक जन से श्लोक। तजो सियानप सुरजनो सिमरो हर हर राय। एक आस हर मन रखो नानक दुख परम पौ जाय। अश्वरी मानो कीटक बिरथी सब जान। देवन को एक भगवान। जिसके दिए रहे अकाए पौर न तिसना लागे आए। मारे राखे को आप मानो के किश नाही आद। तिसका हुकुम भू सकोए तिसका नाम रखंड परोए। सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक बिगन न लागे कोए। उस्त मन में कर निंकार कर मन मेरे साथ व्यवहार।

विनाशनम। जब पूर्ण करता ब्रस होए तब जम की त्रास कहो हो कि सोए। जब आप करते अगोचर प्रय का तब चित्र गुप्त कठपूत लेखा। जब नाथ निरंजन गोचर गादे तब कौन छुटै कौन बंधन बाधे। अपने आप आपी चर जा नानक अपन रूप आप ही उपर जा। जह निर्मल पुरख पुरख पद होता तै पन मैल कहो हो क्या तोता। जय निरंजन निरंकार निरपान ते कौन कुमान कौन अपमान। जय स्वरूप केवल जगदीश तय शल शिद लागत को केस।

का जी जंत के ठाकुरा आपे बरतन हार नानके को पसरिया दूजा कह दुष्टा रटप दे आप कतिया सुनिहार आपे को आप विस्तार जांत भाविता से टुपाए अपने पाणी ले समाए तुम ते पिन नहीं किश होए अपन सूत सब जात परोए जाको प्रभु जी आप जाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत् कबीता नान सगल सठ का जेता जी जंतर सबता के हाथ

आठ पैर प्रभिखु नीरा मिट्टी अज्ञान बिनसे अंधेरा सुन उपदे हृदय बसाव मन छे नान फल पाव हालत परत दोलो सवार राम नामे अंतर उतार पूरे गुर के पूरी दिखिया जिसमन बसे तसा परिखिया मन तन नाम जपो लिवलाय दुख दर्द मनते पूजाय सच बपार करो बपारी दरकर निबह के पुत मारी एका टेक रखो मन माई नानक बौ नया पे जाहे तहते दूर कां को जाय उपरे राखण हार त्याय निरपो जपै सगर पो मिटाय प्रभु कृपा ते प्राणी छुटाय जिस प्रभु राखे तिस नाहीं दुख नाम जपत मन होव सुख चिंता जाय मिटे अहंकार तिस जन को कोई न पूछन हार सरी उपर ठांडा गुर सूरा नानक ताके कारज पूरा मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट दर्शन पेत उदर श्रेष्ठ चरण कमर जाके अनूप सफर दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा सेवक प्रवान अंतर जामी पुरख प्रदान जिस मन बसे सोहो तनिहा ताके निकट न्यावत काल अमर पय अमरा पद पाया साध संग नानक त्या सलोक ज्ञान अंजन गुरतिया अज्ञान अंधेर फिनास हर कृपा ते संत पेटिया नानक मन प्रकाश पदे संत संग अंतर पडीठा ना प्रभु का लागा मीठा सगल समग्री एक सकट माय अनक रंग नाना दिटाय नौ निधि अमर प्रभु का नाम देही मैं इसका विश्राम सुन समाद अनहत तैनात कहन न जाय अचर विसमार तैन दिखिया जिस आप दिखाए नानक ते जन सो जी पाए सो अंतर सो बार अनंत घट घट ब्या प्रया भगवंत तरण माया काल प्यार सर्ब लोक पूरण प्रतपाल बन तैन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म पौन पानी बैसंतर माहे चार कुंट दद से समाय तेस्ते पिन नहीं कोठाओ गुर प्रसाद नान सुपाओ वेद प्राण सिमृत में देखा शशि अर सूर नक्षत्र मय का बाणी प्रभ के सब को बोलै आप अडोल न कबहू डोलै सर्व कला कर खेल खेल बोल न पाई कुणे अमोल सर्व जोत में जाके जोत धार रहो स्वामी उत्पोत गुर प्रसाद परम का नास नानक तिन में हो विसास संत जना का पेखन सब ब्रह्म संत जना सुने सब संत जना के हृदय सब धर्म संत जना सुने सब बचन सर्पया पी राम संग्रचन जिन जाता तिसकी रहत सत बचन साधु सब कहत जो जो होए सोई सुख मान करण हार प्रभ करण करावन हार प्रभ जाने अंतर बसे बार पियो ही नानक दर्शन दे समोए आप सत किया सब सत तिस प्रभ ते सगरी उत्पात तिस पावे ता करे विस्तार तिस पावे ता एक अंकार अनक कला लखी न जाए जिस पावे तिस लय मिलाय कवन निकट कवन कहिए दूर आपे आपे आपर पूरा अंतरगत जिस आप चनाए नानक ते चन आप जाए सर भूत आभर तारा सर्ब नान आपे खनहारा सगल समग्री जा का तना आपन जस आपे सुना आपन जान खेर पनाया आज्ञाकारी की नी माया
सबके मध्य अलिप्त रहै, जो किछ कहना सुआपी कहै। आज्ञा बेआज्ञा जाई, नानक जा पावे तां लै समाए। इसते होए सो नाही बुरा, उरे कहो हो किने किछ करा। आप ला कर तू त्या नेकी, आपे जाने अपने जी के। आप साज तारी सब साच, ओत पोत आपन संगराज।

पदे पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सास सास सिमरो गोबिंद मन अंतर के उतरे चिंद आस अनित त्यागो त्रंग संजना की तुर मन मंग आप छोट बेनती करहो सार संग अगन सागर तरहो।

सुनत कुमारत होते उदार आप तरे लोके निस्तार। सफर जीवन सफरता का संग, जाके मन लाका हर रंग। जय जय शब्द अनाहद बाजै, सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजै। प्रगटे गोपाल महांत के माथे, नानक उदरे तिन कै साथे। शरण जोग सुन सरणी आए, कर कृपा प्रभ आप मिलाए। मिट गए बैर पए सब रेन, अमृत नाम साध संग लैन। सो प्रसन्न पए गुरदेव, पूर्ण होई सेवक के सेव। आर जंजाल विकार ते रहते, राम नाम सुन रसना कहते।

करहो संत मेत सावतान एकाग्र चेत सुखमनि सहज गोबिंद गुण नाम जिस मन बसै सो हो तन दान सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए प्रदान पुरख प्रगट सब लोए सब ते उच पाए स्थान बह न हो पे आपन जान हर तन खाट चले जन सोए।

मैं, कोई ना जाने तुमरा ऊंचे ते ऊंचा, सगल समग्री तुमरे सूत्र तारी तुम ते हो ऐसो, तुमरी गत मित तुम्हें जानी नानक दास। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार, श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं, प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याई। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासे हुए सहाय, अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय, श्री हर कृष्ण त्याजे जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया करनाओ निधावे ताए, सब थाई हुए सहाय, दसवा पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी सब थाई हुए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलो जी। पंजा प्यारियां चौहां साहबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां, जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया, देख चलाई तेग वाही देख के अंडिठ कीता, तना प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलो जी वाहिगुरु। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते, बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चराए गए, गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सुआसां नाल निभाई, तिन्हां दी कमाई दा ध्यान तरके खालसा जी बोलो जी। पंजा तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान तरके बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चेतयावे चेतयावन का सदका सर्व सुख होवे, जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रियायत, देग तेग फतेह बिरध की पैज पंथ की जीत, श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखा नू सिखी दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, विसाह दान, भरोसा दान, दाना सिर दान, नाम दान, श्री अमृतसर जी दे इशनान चौंकियां झंडे बंगे जुगो जोगे अटल, धर्म का जयकार खालसा जी बोलो जी। सिखा दा मन नीवा मत उच्ची, मादा राखा आप वाहिगुरु, हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो, श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है, खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभालदा दान खालसा जी नूं बख्शो, हिन माणियां दे माण नितानियां दे तान, निवटियां दी ओट सच्चे पिता वाहिगुरु आप जी दे पावन पवित्र चरण कमलां पास। अरदास बेनती जोदड़ी प्रार्थना है गरीब नवाज पातशाह जी, उह दर कर दे प्रीतवान सेवक परिवार भाई गुरदेव सिंह, बीबी हरिंदर कौर बैंस परिवार वालों, काका रेमन सिंह बैंस अते बच्ची एनका गहून दे पातशाह आनंद कार्ज की सफलता की याचना करदे होया, सेवक परिवार वालों श्री सुखमणी साहब जी की पावन बाणी के पाठ आरंभ करवाए गए सन, पातशाह जी उदर कर दे प्रीतवान। भाई परमजीत सिंह, बीबी सरबजीत कौर मंडाहर परिवार वालों अपने पोते, भाई अमरिंदर सिंह, बीबी परवजोत कौर मंडाहर परिवार वालों अपने बेटे काका आजाद सिंह मंडाहर दे जन्म की खुशी नूं मुख रखदिआं शुकराना करदिआं, परिवारां वालों श्री सुखमणी साहब जी दे पाठ संध्या समय नूं मुख रखदिआं सोधदार रहिराज साहब तों उपरंत करवाए गए, समुची सेवा निभाउंदिआं होईआं बेअंत भुल्लां चुक्कां दी खिमा अगांह तों समत बख्शिश करनी, समूह सेवक परिवारां दे सिर ते बच्चिआं दे सिर ते मेहरां भरिआ हत्थ रखणा, दुखां कलेशां दरिद्रां विघनां दे नाल सुखां दे प्रकाश चढ़दियां कला दरों घरों गुरसिखी जीवन नाम दी दात दे के नवाजना, मनोकामनावां शुभ भावनावां गुरमत अनुसार पूरियां करनियां, देसां परदेसां विच विचरदिआं बच्चिआं दे सिर ते मेहरां भरिआ हत्थ रखणा, बच्चिआं नूं माता पिता दे आग्याकार उच्च विद्या दी दात नेक मार्ग उत्ते चलण दी प्रेरणा बख्शिश करनी, काम क्रोध लोभ मोह हंकार तों बचा के सत संतोख दया धर्म धीरज दीआं दातां, बाणी बाणे नाल गुरु दर दे नाल प्रेम प्यार बख्शिश करना पातशाह जीओ, इन्हां समयां नूं मुख रखदिआं सेवकां वल्लों आप जी नूं सुंदर पौशाके भेट कीते गए, आप जी ने अंगीकार कीते ने पवित्र हजूरी अंदर कड़ाह प्रसाद दी देग हाजर है दर प्रवान होवे, प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरताउण दी आग्या बख्शिश करने कृपा करो, पावन हुक्म दी दात बख्श के निहाल करो,
ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਸਰਬਾਧੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾ ਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦੁਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਂਗੇ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਂਗੇ ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

तिसि अंतर रवै हर नामा। धन वाहिगुरु साहिब जी, सूही महला पंजवां। गोरे अपने ऊपर बल जाइए, आठ पहर हर हर जस गाइए। गोरे अपने ऊपर बल जाइए, आठ पहर हर हर जस गाइए। सिमरौ सो प्रभ अपना स्वामी, सगल कटां का अंतर जामी रहाओ। चरण कमल स्यों लागी प्रीत, साची पूरन निर्मल रीत। संत प्रसाद वसै मन माही, जन्म जन्म के किल बिख जाही।

नानक मांगे संतर वाला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठे गुरु प्यारे गुरु सवारे अति सत्कार योग सतसंगी जिन्हों वड़ पा गया जिथे आप जिया ने संध्या समय नूं मुख रखदे आ सोधा रहरा साहब जी की पावन बाणी के पाठ सरवण किए ने सेवक परिवार भाई अमरिंदर सिंह बीबी परमजोत कौर मंडाहर परिवार वालों काका आजाद सिंह मंडाहर के जन्म की खुशी नूं मुख रखदे आ अते भाई गुरदेव सिंह बीबी हरिंदर कौर बैंस परिवार वालों काका रेमन सिंह बैंस से बच्ची एनका गहुन दे आनंद कार्ज की सफलता की याचना करदे आ परिवार वालों श्री सुखमणि साहब जी की पावन बाणी के पाठ आरंभ करवाए गए हैं। अकाल पुरख वाहगुरु जी की अपार कृपा बख्शिश रहमत हुई निर्विघ्नता सहित संपूर्णता उपरंत आनंद साहब छे पौड़ियां की अरदास और इस मौके ते सतगुरां ने जो पावन मुख वाक की दात बख्शिश की है पवित्र उपदेश आप संगत ने बड़े प्रेम अदब सत्कार सहित सरवण किए हैं। परिवार वालों आईया हुई समूह संगत का तय दिल तो धन्यवाद है जिन्होंने परिवार के सदे पत्र से पहुंच के परिवार का माण वधाया है। आईया हुई समूह संगत वास्ते गुरु के लंग

बोलना जी। सतनाम श्री वाहे गुरु, एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय, वार श्री भगवती जी की पातशाही। दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदासें हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरों श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आइए जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नौन दयावै ताए। सब थई होए सहाय, सब थई होए सहाय। दसवां पातशाह धन धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज। सब थई होए सहाय, दसां पातशाहियां की जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ, दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी। पंजां प्यारिया चौहां साहिबजादियां, 40 मुक्तियां हटियां जपियां तपियां। जिन्हां नाम जपया वंड छकिया, देख चलाई तेग वाही देख के अणडिट कीता। तिन्हां प्यारिया सच्यारिया जी की ने कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी साहिब बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्मे तसीस दित्ते, बंद बंद कटवाए। खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े तनारिया नल चुरवाए। गुरद्वारिया की सेवा लई कुरबानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया। सिखी केसा सुवासा संग नवाही, भाणे नूं मिठा करके मन्निया। तिन्हां सिरकवाना समूह शहीद सिंघां सिंघणियां जी की ने कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी साहिब बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास। सरबत खालसा जी।

ओट ने आसरियों के आसरे सच्चे पिता वाहिगुरु हे अकाल पुरख अंतर जामी पिता जी आप जी के पावन पवित्र चरण कमला पास अरदास बेनती जोदड़ी हे कृपालु शहनशाह जी की मेहर सदका आप जी की पवित्र हजूरी दे अंदर संध्या काल दे दीवान सजाए गए सजे वे दीवाना अंदर आप जी की रब्बी बाणी दे पठन पाठ गुरबाणी कीर्तन ढाडी वारा गुरतिहासक विचारा होईयां ने महाराज समुचा प्रोग्राम आप जी की पवित्र हजूरी अंदर नभाउंदिआं होईयां बेअंत प्रकार दीआं भुल गलतियां खतावां आप जी ने बख्श लैणियां अगां वास्ते समत बुद्ध मेहर करके बख्शिश करनी पढ़ी सुनी बाणी ते इतिहास दे अर्थ भाव आईआं होईआं सर्वत संगतां दे हिरदिआं विच वसाउणे मेहर करनी महाराज सजे वे दीवाना अंदर इस वक्त बेअंत संगतां ने आप जी के चरणां दे विच हाजरियां भरियां सर्वत संगतां दीआं हाजरियां पिटावां दर प्रवान करनियां चल के आए हुए कदम कदम लेखे विच लाउणे अरदासां बेनतियां भावनावां गुरमत मुताबक परिपूर्ण करके दरों घरों गुरसिखी सिदक भरोसा नाम दान मेहर करके बख्शिश करना सर्वत संगतां दे परिवारां दे किरत कमाईआं च बरकतां कारोबारी तरक्कियां वाधे मेहर करके बख्शिश करने दुखां दर्दां दलिद्रां बिघनां दा नाश घर विच सुखां दा प्रकाश देशां विदेशां विच विचरदिआं सिर ते मेहर भरिआ हथ रखणा दरों घरों शरीरक तंदुरुस्ती दे अरोगता चढ़दी कला नाम दान इशनान दिया दाता मेहर करके बख्शिश करनिया परिवारां विच परस्पर प्रेम प्यार एका इतफाक मेहर करके बख्शना मारे सच्चे पातशाह सेवकां दे रंबे कारजां दे विच सेवकां नूं सफलतावां बख्शणियां बच्चियां दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखदिआं होइआं बच्चियां नूं लंबी आयु बच्चे माता पिता दे आग्याकार देश कौम दा प्यार नाम बाणी दीआं रहमतां चढ़दी कला दा जीवन मेहर करके बख्शिश करना इस वक्त आप जी के पवित्र चरणां दे विच संध्या काल दे सजे हुए दीवाना दी संपूर्णता दी अरदास अखर वाधा घाटा भुल चुक माफ करना बख्शो पवित्र हुक्मनामे से प्यारे मेलो जिन मिले आप जी का नाम चेतावे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह दोहराया गया भई अकाल की तब चलायो सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की जो प्रभ को मिल बोच है खोज शब्द में राज करेगा खालसा याकी रहना खुवार हुए सब मिलेंगे बचे शरण जो खुवार

0: मत गुर मत नाम दृढ़ावे रा गौड़ी माज महला चौथा। गुरमुख जिंदु जप नाम करमा मत माता मत जियो नाम मुख रामा संतोख पिता कर गुर पुरख अजन्मा वडभागी मिल रामा। गुर जोगी पुरख मिलिया रंग माणी जियो गुर हर रंग रतड़ा सदा निर्बाणी जियो वडभागी मिल सुगड़ सजाणी जियो। मेरा मन तन हर रंग पिन्ना आवो संतो मिल नाम जपाहा विच संगत नाम सदा ले लाहा जियो कर सेवा संता अमृत मुख पाहा जियो मिल पूर्व लिखेड़े तुरकर्मा। सावन वरस अमृत जग छाया जियो मन मोर कोह के अड़ा शब्द मुख पाया हर अमृत वठड़ा मिलिया हर राया जियो जन नानक प्रेम रतन्ना गौड़ी माज महला चौथा। आओ सखी गुण कामन करी हा जियो मिल संत जना रंग मान रलिया जियो गुर दीपक ज्ञान सदा मन बलिया जियो हर तुठे ढोल ढोल मिलिया जियो। मेरे मंतन प्रेम लगा हर ढोले जियो मैं मेले मित्र सतगुर वे चोले जियो मन देवा संता मेरा परम मेले जियो हर विटड़े सदा कोले जियो। वस मेरे प्यारिया वस मेरे गोविंदा हर कर कृपा मन वस जियो मन चिंदेड़ा फल पाया मेरे गोविंदा गुर पूरा वेख विगस जियो। हर नाम मिलिया सुहागनी मेरे गोविंदा मन अन दिन आनंद रहस जियो हर पायड़ा वड भागी मेरे गोविंदा नित लैला हा मन हस जियो हर आपे उपाए हर आपे वेखै हर आपे कारे लाया जियो। एक खाम है बख्श तोट ना आवे एक ना फका पाया जियो एक राजे तख्त बहन नित सुखिए एक ना भिख मंगाया जियो। सभी को शब्द वर्तदा मेरे गोविंदा जन नानक नाम ते आया जियो गौड़ी माज महला चौथा। मन माही मेरे गोविंदा हर रंग रता मन माही जियो हर रंग नाल न लखिए मेरे गोविंदा गुरपूरा लख लखाई जियो। हर हर नाम प्रगाचया मेरे गोविंदा सब दर्द दुख ले जाई जियो हर पद उत्तम पाया मेरे गोविंदा वडभागी नाम समाई जियो। नैनी मेरे प्यारिया नैनी मेरे गोविंदा किने हर प्रब डिठड़ा नैनी जियो मेरा मन तन बहुत बैरागिया मेरे गोविंदा हर बाजो तन कुम लैनी जियो। संत जना मिल पाया मेरे गोविंदा मेरा हर प्रभ सज्जन सैने जियो हर आए मिलिया जग जीवन मेरे गोविंदा मैं सुख विहानी रहनी जियो। मैं मिलो संत मेरा हर प्रभ सज्जन मैं मन तन भुख लगाया जियो हाँ रह ना सकौ बिन देखे मेरे प्रीतम मैं अंतर बिरो हर लाइया जियो हर राया मेरा सज्जन प्यारा गुर मेले मेरा मन जी वाइया जियो मेरे मन तन आसा पूरिया मेरे गोविंदा हर मिलिया मन वाधाइया जियो। वारी मेरे गोविंदा वारी मेरे प्यारिया हाँ तुद विठड़ियों साधवारी जियो, मेरे मंतन प्रेम पिरम का मेरे गोविंदा, हर पूंजी राख हमारी जियो। सतगुर विष्ट मेल मेरे गोविंदा, हर मेले कर रहे बारी जियो, हर नाम दया कर पाया मेरे गोविंदा, जन नानक शरण तुम्हारी जियो। गौड़ी माज महला चौथा, चो जी मेरे गोविंदा, चो जी मेरे प्यारिया, हर प्रभ मेरा चो जी जियो, हरे आपे कान्हे उपाइंदा मेरे गोविंदा, हरे आपे गोपी खोजी जियो, हार आपे सब कट भोगदा मेरे गोविंदा, आपे रसिया भोगी जियो, हर सुजान ना भुलई मेरे गोविंदा, आपे सतगुर जोगी जियो, आपे जगते पाइंदा मेरे गोविंदा, हरे आप खेले बोरंगी जियो, एक ना भोग भोगाइंदा मेरे गोविंदा, एक नगन फिरे नंग नंगी जियो, आपे जगते पाइंदा मेरे गोविंदा, हर दान देवे सब मंगी जियो, भगता नामे आधार है मेरे गोविंदा, हर कथा मंगे हर चंगी जियो, हरे आपे भगत कराइंदा मेरे गोविंदा, हर भगता लोच मन पूरी जियो, आपे जल थल वरतदा मेरे गोविंदा, रव रहया नहीं दूरी जियो, हरे अंतर बाहर आप है मेरे गोविंदा, हरे आप रहया भर पूरी जियो, हरे आत्म राम पसारिया मेरे गोविंदा, हर वेखे आप हदूरी जियो, हरे अंतर वाजा पौन है मेरे गोविंदा, हरे आप बजाए त्यों वाजे जियो, हरे अंतर नाम निधान है मेरे गोविंदा, गुर शब्दी हर प्रभु का जय जियो, आपे शरण पवाइंदा मेरे गोविंदा, हर भगत जना राख ला जय जियो, वड भागी मिल संगति मेरे गोविंदा, जन नानक नाम सिद्ध का जय जियो। गौड़ी माज महला चौथा, मैं हर नाम मैं हर बिरोल गाई जियो, मेरा हर प्रभ मित मिले सुख पाई जियो, हर प्रभ देख जीवा मेरी माए जियो, मेरा नाम सखा हर पाए जियो, गुण गावो संत जियो मेरे हर प्रभ घेरे जियो, जब गुरमुख नाम जियो भाग वडेरे जियो, हर हर नाम जियो प्राण हर मेरे जियो, फिर बौड़ना भव जल फेरे जियो, क्यों हर प्रभ वेखा मेरे मंतन चाओ जियो, हर मेलो संत जियो मन लगा पाओ जियो, गुर शब्दी पाइये हर प्रीतम राओ जियो, वड भागी जपनाओ जियो, मेरे मन तन वडड़ी गोविंद प्रभ्यासा जियो, हर मेलो संत जियो गोविंद प्रभासा जियो, सतगुर मत नाम सदा प्रगाशा जियो, जन नानक पूरे अड़ी मन आसा जियो। गौड़ी माज महला चौथा, मेरा बिरही नाम मिले ता जीवा जियो, मन अंदर अमृत गुरमत हर लीवा जियो, मन हर रंग रतड़ा हर रस सदा पीवा जियो, हर पाए अड़ामन जीवा जियो, मेरे मन तन प्रेम लगा हर बाण जियो, मेरा प्रीतम मित्र हर पुरख सुजान जियो, गुर मेले संत हर सुगड़ सुजान जियो, हो नाम विटों कुर्बान जियो, हाँ हर हर सज्जन हर मीत दसाई जियो, हार दसो संतो जी, हर खोज पवाई जियो, सतगुर तुठड़ा दसे हर पाई जियो, हर नामे नाम समाई जियो। मैं वेदन प्रेम हर बिरो लगाए जियो, गुर शरदा पूर अमृत मुख पाए जियो, हर हो दयाल हर नाम ते आए जियो, जन नानक हर रस पाए जियो। महला पंजवा राग गौड़ी ग्वारे री चौपदे, एक ओंकार सत गुर प्रसाद। किन बिद कुशल होत मेरे पाई, क्यों पाइये हर नाम सहाय रहाओ। कुशल नगरे मेरी समाया, उच्चे मंदर सुंदर छाया, झूठे लालच जन्म गवाया। हस्ती घोड़े देख विगासा, लश्कर जोड़े नेब खवासा, गल जेवड़ी होमे के फासा। राज कमावे दादे सारी, माने रंग भोग बोनारी, ज्यो नरपत सुपने पेखारी। एक कुशल मोको सतगुरु बताया, हर जो किश करे सो हर क्या भगता पाया, जन नानक होमे मार समाया। इन बिद कुशल होत मेरे पाई, यो पाई हर राम सहाय रहाओ। दूजा गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा, क्यों प्रमिये प्रम किसका होई, जा जल थल मैयल रविया सोई, गुरमुख उभरे मनमुख पत खोई। जिस राखे आप राम दयारा, तिस नहीं दूजा को पहुंचन हारा रहाओ। सब मैं वरते के अनंता, ता तू सुख सो होए अचिंता। ओ सब किश जाने जो वर्तनता, मन मुख मुए जिन दूजी प्यासा, बोजोनी भवें तुरकर तिलख यासा, जैसा बीजे तैसा खासा। देख दर्श मन पया विगासा, सब नदरी आया ब्रह्म प्रकाशा, जन नानक की हर पूर्ण आसा। गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा, कई जन्म पै कीट पतंगा, कई जन्म का जमीन को रंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म है वर ब्रिख जोयो, मिल जगदीश मरण की बरिया, चिरंकाल दे संजरिया रहा। कई जन्म सैल गिर करया, कई जन्म गर्भ हेर खरया, कई जन्म शाह कर उपाया, लख 84 जोन परमाया। साध संग भयो जन्म प्राप्त, कर सेवा पज हर हर गुरमत, त्यागमान झूठ अभिमान, जीवत मरें दरगा प्रवान। जो कि शोवा सो तुझ ते होग, अवरण दूजा करने जोग। तामिलिये जा लै मिलाए, को नानक हर हर गुण गाए। गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा, करम भूम मैं बो नाम, पूर्ण होए तुम्हारा काम। फल पावे मिटे चम त्रास, नित गावे हर हर गुण जास, हर हर नाम अंतर उर तार, शीघ्र कार्ज ले सवार रहा। अपने प्रभ स्यों हो सावधान, ता तू दरगा पावे मान, उकत सियाणप सगली त्याग, संत जना की चरणी लाग। सर्ब जी है जाके हाथ, कदे न बिछड़े सब के साथ। उपाव छोट गौ तिस की ओट, नमख माए होवे तेरी छोट, सदा निकट कर तिसनो जान, प्रभ की आ गया सत करमान। गुर के बचन मिटावो आप, हर हर नाम नानक जप जाप। गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा, गुर का बचन सदा अविनाशी, गुर के बचन कट्टी जमफासी, गुर का बचन जी के संग, गुर के बचन रचे राम के रंग। जो गुर दिया सो मन कै काम, संत का किया सत कर मान रहा। गुर का बचन या टाले छेद, गुर के बचन कटे प्रम भेद। गुर का बचन कतौ न जाए, गुर के बचन हर के गुण गाए। गुर का बचन जी के साथ, गुर का बचन नाथ को नाथ। गुर के बचन नरक न पवै, गुर के बचन रसना अमृत रवै। गुर का बचन प्रगट संसार, गुर के बचन न आवै हार। जिस जन होए आप कृपाल, नानक सतगुर सदा दयाल। गौड़ी गुआरी री महला पंजवा, जिन कीता माटी ते रतन, घर मैं रखिया जिन कर जतन। जिन दिनी शोभा वडियाई, तिस प्रभु को वाट पैर ते आई। रमैया ऋण साध जिन पावो, गुर मिले अपना खसम ते आओ रहाओ। जिन कीता मूड ते भगता, जिन कीता बेसुरत ते सुरता। जिस प्रसाद नमै निज पाई, सो प्रमंते बिसरत नाही। जिंदिया निथावे को थान, जिंदिया नी माने को मान। जिन कीनी सब पूर्ण आसा, सिमरो दिन रहन सास गिरासा। जिस प्रसाद माया सिल काटी, गुर प्रसाद अमृत बिखाटी। कौ नानक किस ते किश नाही, राखण हारे को सालाही। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा, तिस की शरण नाही पसोग, उसते बार कछु न होग। तजी स्याण बल बुद्ध बिकार, दास अपने की रखनहार। जप मन मेरे राम राम रंग, कर बाहर तेरे सत्संग राओ। तिस की टेक मन मैं राख, गुर का शब्द अमृत रस चाख। अवर जतन कहो कौन काज, कर कृपा रख आप लाज। क्या मानुख कहो क्या जोर, झूठा माया का सब शोर। करण करावण हार स्वामी, सकल कटा के अंतर जामी। सर्ब सुखा सुख साचा हो, गुरु उपदेश मन मैं ले हो। जाको राम नाम लिव लागी, कौ नानक सो धन वड पागी। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा, सुन हर कथा उतारी मैल। महा अपनीत पै सुख सैल, वड्डे पाग पाया साध संग। पार ब्रह्म सिंह लागो रंग, हर हर नाम जपत जन तारियो। अगन सागर गुर पारे उतारियो रहाओ। कर कीर्तन मन शीतल पै, जन्म जन्म के किल विग गए। सर्व निधान पेखे मन माहे, अब ढूंढन काहे को जाहे। प्रभ अपने जपे दयाल, पूर्ण होई सेव काल। बंधन काट किए अपने दास, सिमर सिमर सिमर गुण तास। एको माने को सब ठाए, पूर्ण पूरे हो सब जाए। गुर पूरा सब परम चुकाया, हर सिमरत नानक सुख पाया। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा, अगले मुए से पाछे परे। जो बरे से बांध लख खरे, जे धंधे में ओ लपटाए। उनते दुगुण दिड़ी यु नमाए, ओ बेला कछ चीत न आवे। बिन सजाए ताहू लपटावे रहा, ओ आसा बंदी मूर्ख दे। काम क्रोध लपटे वसने, सिरी उपर ठाडो तरम राय। मीठी कर कर बिखिया खाए, हो बंदा हो साधो बैर। हमरी भूम कौन काले पैर, हा पंडित हो चित्र सियाना। करण हार ना बुझे बेगाना, अपने गत मित आपे जाने। क्या को कहे क्या आख बखाने, जित जित लावे तित तित लगना। अपना भला सबका हूं मंगना, सब किस तेरा तू करने हार। अंत नाही किस पारावार, दास अपने को दीजे दान। कबहू ना विसरे नानक नाम। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा, अनक जतन नी होत छुटारा। बहुत सियाण पिया गलपारा, हर की सेवा निर्मल हेत, प्रभु की दरगाह शोभा सेत, मन मेरे को हर नाम का ओला, तुझे न लागे ताता झोला रहाउ। ज्यों बोहित पैसा गरमा है, अंधकार दीपक दीपा है, अगण सीत का लाहस दुख, नाम जपत मन होवत सुख। उतर जाए तेरे मन की प्यास, पूर्ण होवे सगली आस, डोले नाही तुमरा चीत, अमृत नाम जप गुरमुख मीत। नाम उखद सोई जन पावे, कर कृपा जिस आप दिवावे, हर हर नाम जाके हृदय वसै, दुख दर्द ते नानक नसै, गौड़ी गुआरे री माला पंजवा। बहुत दर्ब कर मन ना या घना, अनक रूप देख न पतियाना, पुत्र कलतर उर जो जान मेरी, ओ बिन से ओ पस में टेरी। बिन हर भजन देखो बिरलाते, त्रिग तन त्रिग तन माया संगराते रहाओ। ज्यों बिगारी कैसर दीजे दाम, ओए खसमे के गृह उंदूक सहाम, ज्यों सुपने हुए बैस राजा, नेत्र पसारे तन रात काजा। ज्यों राखा खेती ऊपर पराए, खेत खसम का राखा उठ जाए, उस खेत कारण राखा कड़े, तिसके पाले कछु ना पड़े। जिसका राज तुसे का सुपना, जिन माया दीने तिन लाई तृष्णा, आप बिना है आप करे रास, नानक प्रभा की अरदास, गौड़ी कुआरे री महला पंजवा। बहु रंग माया बहु बिद पेखी, कलम कागद स्याण पलेखी, मैर मलूक को देखिया खान, ताते ना ही मंत्र पतान। सो सुख मोको संत बतावो, तृष्णा बूझे मंत्र बतावो रहाओ। आस पवन हस्ते सवारी, चोआ चंदन सेज सुंदर नारी। नाट नाट किया खारे गाया, ता मैं मन संतोख ना पाया, तखत सभा मंडन दो लीचे, सगल मेवे सुंदर बागीचे। आखेड़ बिरत राजन की लीला, मानना सुहेला पर पंचे।
1: साध संग हर कीर्तन गाइए, कहो नानक बढ़पा की पाइए, जाके हर तन सोई सहेला, प्रभु कृपा ते सार समेला, रहाओ दूजा गौड़ी ग्वारी महला पंजवा। प्राणी जाने एहो तन मेरा, पहर पहर वाहु लपटेरा, पुत्र कलतर गृहस्थ का फासा, हुन पइए राम के दासा। कवन सो बिद जित राम कुन काए, कवन सो मत जित तरे ए माए रहा। जो भलाई सो बुरा चाने, साच कहे सो बिखै समाने, जाने नाही जीत अरहार, इहो फलेफा साकत संसार। जो हलाहल सो पीवे पौरा, अमृत नाम जाने कर कौरा। साध संके नाही नेर, लाख चौरासी ही प्रमता फेर। एक जाल फाए पंखी, रसर पोक करे पोरंगी। कहो नानक जिस पे कृपाल, गुर पूरे ताके काटे जाल। गौड़ी कुआरे महला पनमा, तो कृपा ते मार्ग पाइय, प्रभु कृपा ते नाम त्याहिय। प्रभु कृपा ते बंधन छूटै, तो कृपा ते होमै तुटै। तुम लभु तोला कैसे पर, हम ते काशु न हो पे दे पर रहा। तुद भावे तां गावां पाणी, तुद भावे तां सच वखाणी, तुद भावे तां सतगुर मिलिया, सर्ब सुखा प्रभ तेरी दया। जो तुद भावे सो निर्मल कर्मा, जो तुद भावे सो सच धर्मा, सर्ब नितान गुण तुम ही पास, तू साहिब सेव करदास, मन तन निर्मल होए हर रंग, सर्व सुखा पावो सतसंग, नाम तेरा रहे मन राता, इहो कल्याण नानक कर जाता, कौड़ी कुआरि महला पन्मा, आन रसा जेते ते चाखे, निमखना तिसना तेरी लाथे, हर रस का तू चाखे साध, चाखत होए रहे बिस्मार, अमृत रसना पियो प्यारी, ए रस राती होए तृप्तारी रहा। हे जिहवे तू राम कुन काव, निमख निमख हर हर हर त्याव, आन सुनिए कतहु जाइए, साध संगत पड़फागी पाइए, आठ पहर जे पिया राध, पार ब्रह्म ठाकरे अगाध, इहां उहां सदा सहेली, हर कुण कावत रसने बोली, बनस पत मौली फल फूल पेड़े, ए रस राती बहुर ना छोड़े, आन रस कस लवे नलाई, कहो नानक गुर पै है सवाई, गौड़ी कुवारी महला पन्मा, मन मंदर तन साजी पार, ऐसी मते बाते अपार, ऐस ही पीतर सुनियत साहो, कवन पारी जाका उहां बसाव, नाम रतन को बिहारी, अमृत भोजन करे आहारी रहा, मन तन अर्पी सेव करी जाय, कवन सो जोगत जित कर पी जाय, पाए लगो तज मेरा तेरा, कवन सो जान जो सौदा जोर है, महल सा का किन विद पावे, कवन सो बिद जित पीत बुलावे, तू वड साहू जाके कोट पंजारे, कवन सो दाता ले संसारे, खोजत खोजत निज कर पाया, अमोल रतन साच दिखलाया, कर कृपा जब मिले साहे, कहो नानक गुर के विसाहे, गौड़ी महला पन्मा गुआर रे, रैन दिन स रहे एक रंगा, प्रभ को जाने सदे संगा, ठाकर नाम कियो उन्वर्तन, त्रिवत कापन हर कै दर्शन, हर रंग राते मन तन हरे, कर पूरे की सरणी परे रहा, चरण कमल आत्म आधार, एक निहारे आज्ञाकार, एको बन जेको बिहारी, अब न जाने बिन निरंकारी, हर के सोग दोहों ते मुक्ते, सदा अलेपत जोग अर जुगते, दिस है सब में सब ते रहते, पार ब्रह्म का ओए ध्यान तरते, संतन की महिमा कवन बखानो, अगाध बोध किस्मत नहीं जानो, पार ब्रह्म वही कृपा की जय, तूर संतन की नानक दी जय, गौड़ी ग्वार रे महला पंजमा, तू मेरा सखा तू ही मेरा मीत, तू ही मेरा प्रीतम तुम संहित, तू मेरी पत, तू है मेरा प्रा, तू है मेरा कहना, तू मेरी पत, तू है मेरा कहना, तुझ बिन निमख न जाई रहना, तू मेरे लालन तू मेरे प्राण, तू मेरे साहिब तू मेरे खान रहा, जो तुम राखो तुम ही रहना, जो तुम कहो सोई मोहे करना, जय पेखो ताहा तुम बसना, निरपो नाम जपो तेरा रसना, तू मेरी नवनत तू पंडार, रंग रसा तुमने आधार, तू मेरी शोभा तुम संग रचिया, तू मेरी ओट तू है मेरा तकिया, मन तन अंतर तुही ते आया, मर्म तुम्हारा गुर ते पाया, सतगुर ते दृढ़िया एक एक है, नानक दास हर हर हर टेक है, गौड़ी कुआर।

संग राता, व्यापत हस्त घोड़े अर बस्ता, व्यापत रूप जोपन मत मस्ता, व्यापत भूम रंग अररंगा, व्यापत गीत नाद सुन संगा, व्यापत सेज महर सिंगार। पंच तूत ब्यात्यंदियार, व्यापत कर्म करे हों फासा, व्यापत गृहस्थ व्याप्त उदासा, अचार बिहार व्याप्त एजात, सब किस व्याप्त बिन हर संगरात। संतन के बंधन काटे हर राय, ताको कहाँ व्यापे माय, कहो नानक जिन तूर संत पाई, ताके निकटने आपे माई, गौड़ी ग्वार रे महला पनमा। नैनो नींद पर दृष्ट विकार, श्रवण सोए सुन निंद विचार, रसना सोई लोप मीठे साद, मन सोया माया विस्माद। इस ग्रह में कोई जागत रहे, सावत वस्त उहो अपनी लहै रहा। सगर सहेली अपने रसमाती, ग्रह अपने की खब न जाती। मुसनहार पंच बटवारे, सुने नगर परे ठगहारे, उनते राखे बाप न माई, उनते राखे मीत न पाई। दर्ब सियानप ना उहि रहते, साध संग उहि दुष्ट बस होते, कर कृपा मोहि सारंग पान, संतन तूर सर्प नदान। साबत पूंजी सतगुर संग, नानक जागे पार ब्रह्म के रंग, सो जागे जिस प्रभ किरपार। ए पूंजी साबत तनवार, रहाओ दूजा गौड़ी ग्वार रे महला पनमा, जाके वस खान सुल्तान, जा कै बस है सगर जहान, जाका किया सब कुछ होए, तिसते बाहर नाहीं कोए, कहो बिनंती अपने सतगुर पाए, काज तुम्हारे देहे निबाहे रहा, सबदे ऊच जाका दरपार, सगल भगत जाका नाम आधार। सर्ब व्यापत पूर्ण तनी, जाकी शोभा कट कट बनी, जिस सिमरत दुख डेरा टहै, जिस सिमरत जम किशो न कहै, जिस सिमरत होत सूके हरे, जिस सीमत डूबत पाहन तरे। संत सबाकू सदा जयकार, हर हर नाम जन प्राणी उदार। कहो नानक मेरी सुनी अरदास, संत प्रसाद मुखो नाम निपास। गौड़ी कुवारी महला पनमा, सतगुर दर्शन अग्नि पारी, सतगुर पेट तो हमें मारी। सतगुर संग नाई मन डोले, अमृत बाणी गुरमुख बोले, सब जग साचा जहां सच में राते, सीतर सांत गुरते प्रभ जाते रहाव। संत प्रसाद जपे हर नाव, संत प्रसाद हर कीर्तन गाव, संत प्रसाद सगर दुख मिटाए, संत प्रसाद बंधन ते छुटाए, संत कृपा ते मिटे मोह भरम।

साध के संग पार ब्रह्म पछाणा जन ऊपर प्रभ पए दयाल जन की टेक एक गोपाल एकालिब एक मन पाए सर्वन दान जन के हरनाय पार ब्रह्म सो लागी प्रीत निर्मल करनी साची रीत गुरपुरे मिटिया अंधियारा नानक का प्रभ अपरिय पारा गौड़ी ग्वाररी महला पंजमा जिस मन बसै तरे जन कोय जिस मन बसै तरे जन सोए जाके कर्म प्राप्त होए दुख रोग कछ पो न व्यापे अमृत नाम हृदय हर जापे पार ब्रह्म परमेश्वर ध्याई गुर पूरे ते ए मत पाई रहा करण करापन हर दयाल जी चंत सगले प्रतपाल अगम्य गोचर सदा बेअंत सिमर मना पूरे कुरमंत जाकी सेवा सर्पण दान प्रभ की पूजा पाइये मान जाकी टहल न बिरथी जाए सदा सदा हर के खुण गाए कर कृपा प्रभ अंतर जामी सुख निदान हर अलख स्वामी जी जंत तेरी शरणाई नानक नाम मिलै पढ़ियाई गौड़ी ग्वार रे महला पंजमा जी जुगत जाके है हाथ सो सिमरु अनाथ को नाथ प्रभ चित आए सब दुख जाए पै सब बिन से हर के नायर बिन हर पौ काहे का मन है हर बिसरत काहे सुख जाने ला जिन तारे बोतरण आकाश जाकी जोत जी प्रकाश जाकी बख्श न मिटे कोए सिमर सिमर प्रभ निरप होए आठ पहर सिमरो प्रभ नाम अनक तीर्थ मजन स्नान पार ब्रह्म की सरणी पाहे कोट कलांक खिन में मिट जाए बेमो ताल पूरा पाछाओ प्रभ सेवक साचा विसाव गुर पूरे राखे दे हाथ नानक पार ब्रह्म सम्राथ गौड़ी कुवार रि महला पनमा गुर प्रसाद नाम मन राका जन्म जन्म का सोया जागा अमृत गौण चरै प्रभाणी पूरे गुर की सुमत प्राणी प्रभ सिमरत कुशल सब पाए कर बाहर सु सहज सबाय रहा सोई पछाता जिने उपाया कर कृपा प्रभ आप मिलाया बाहा पकर लीनो कर अपना हर हर कथा सदा जप जपना मंत्र तंत्र औखद पनेचार हर हर नाम जी प्राण आधार साचा तन पायो हर रंग दुतर तरे साध कै संग सुख बैसो संत सज्जन प्रवान हर तन खाट्यो जाका नाहे सुमार जिसे प्राप्त तिस गुर दे नानक बिरथा कोई नहे गौड़ी कुवारे महला पनमा हस्त प्रीत होहे तत्काल
बिनस जाहे माया जंजाल, रसना रमो राम कुण नीता, सुख पावो मेरे भाई मीता। लिख लेखद लिख लेखन कागद मसवाणी, राम नाम हरि अमृत पाणी रहा। ए कारज तेरे जाय विकार, सिमरत ना सिमरत राम नाही जम मार। धर्म राय कै दूत न जो है, माया मकन ना कछु मोह है। उदरे आप तरे संसार, राम नाम जप एकंकार। आप कमाऊ अवरा उपदेस, राम नाम हृदय प्रवेश। जाके माथे इहुन दान, सोई पुरख जपे भगवान। आठ पैर हर हर गुण गाऊ, कहो नानक हों तिस बर जाऊ। राग गौड़ी कुआरी महला पनमा, चौपदे दो पदे एक ओंकार। सतगुर प्रसाद जो परायो सोई अपना, जो तज छोड़न तिसो मन रचना। कहो गुसाई मिलिय केहे, जो बिबरजत तिस सो नेह रहा। झूठ बात सच सच कर जाती, सत हो पन मन रखे नराती। बाबे मार्ग टिड्डा चरना, सीधा छोड़ अपूठा बुनना। दोहां सिरियां का खासम प्रसोई, जिस मेले नानक सुमुक्ता होई। कौड़ी कुआर महला पनमा, कर युग में मिले आए संजोग। जितर आख्या तिचर भोगे भोग, जले न पाइये राम स्नेही। किरत संजोगी सती उठ होई रहा। देखा देखी मन हठ जर जाई है, प्रय संग न पावे बहु जोन पवाई है। सिर संजम प्रया क्या मन है, तिस नारी को दुख ना जमानै। कहो नानक जिन प्रयो परमेसर कर जाने आ, तन सती दर के परवाने आ। गौड़ी ग्वार रे महला पनमा, हम तनवंत पाखट सच नाए। हर कुन गापै सहज सपाए रहा। पियो दादे का होर डिठा खजाना, ता मेरे मन भया निदाना। लाल रतन लाल जाका कछु न बोल, परे भंडार अखूट अतोल। खावे खर चै रल मिल पाई,

सोहित खजाने दिया लड़ाई। कहो नानक जिस मस्तक लेख लिखाई, सोहित खजाने दिया लड़ाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु।

0: ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्ति अजूनी सैपं गुर प्रसाद आसा महला पहला वार सलोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे ढूंढे अस राजा की तुनी श्लोक महला पहला बलहारी गुरे अपने दुहाड़ी सदवा जिन मानस ते देवते किए करतना लागी वार महला दूजा
1: जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार एते चानन हुंदे।

बढ़िया पिनप साजू अपने रचुनाओ दोए कुदरत साजिए करा संडी ठोचाओ दाता करता आप तू तुस दे वह करे पसाओ तू जाने सबसे दिल सह जिंद कवाओ करिया संडी ठोचाओ

0: सच एक महला पहला।
1: नानक निरपौ निरंकार होर किते राम रवा, कितियां कन कहानियां किते वेद विचार, किते नचे मंगते गिड़मंड पूरे ताल, बाजारी बाजार में आए कड्डे बाजार, गावे राज रानिया बोले आल पताल, लगटकियां के मुंदड़े

सगल जहान। सेवक सेवै कर्म चढ़ाओ भिन्नी रहन जना मन चाओ। सिखी सिखिया गुर विचार नदरी करम लंगाए पार। कोलू चरखा चाकी चक

राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहननहार कूड़ काय कूड़ कपड़ कूड़ रूपया पार।

दारू सुख रोग पया जस उत्तम न हो। तू करता करना मैं नाही जाहो करी न हो। बलहारी कुदरत वसिया तेरा अंत न जाई लख्या रहा। जात मह जोत जोत जात मह जोत जोत मह जाता कल कला भरपूर रहिया। तू सच्चा साहिब सिफत सवाले जिन की सो पा।

पौड़ी साहिब होए दयाल, पौड़ी साहिब होए दयाल कृपा करे तो साई कार कराए सी। सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म नाए सी, हुक्म न होवे परवान त कसमे का मैल पाए सी। कसमे पावे सो करे मन चुंदिया सो फल पाए सी, तदरगा पैंदा जाए।

जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

जुगो जुग अटल, चवर शतर तख्त दे मालक, हाजरा हजूर जारा जहूर, शब्द गुरु बाणी के बोहित, अमृत के दाते, दसां पातशाहियां दी जोत, साहिब सच्चे पातशाह, सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, तिन्हां दी पावन पवित्र ते मुकद्दस हजूरी विच अमृत वेले तों सज्जे दीवानां दीआं हाजरियां भर रहे अति सत्कारयोग सन्मानयोग सतसंगी जनों, सतगुरां ने बड़ी अपार बख्शिश रहमत कीती है। आप सब अमृत वेले तों सज्जे दीवानां दीआं हाजरियां भरदिआं रब्बी बाणी आसा की वार दे कीर्तन मेरे तों पहलां गुरु घर के रागी जथे पासों सरवण कर रहे सी। तो आओ साध संगत, समा है जो अज सतगुरु का पावन आवाजा उपदेश हुक्मनामा साहब है। ज्ञानी जी ने सरबत दे भले की अरदास करके ते आप जी नूं सरवण कराया है। तो आओ इस पावन मुखवाक की विचार नूं आरंभण तो पहला दर घर की मर्यादा नूं मुख रखदिआं आपस विच फतेह दी सांझ पाईए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राग बिलावल विच पंजवें पातशाह धन गुरु अर्जुन साहब महाराज जी का यह वाक गुरु ग्रंथ साहब जी दे अंक 805 और 6 दे उत्ते सुभायमान है। धन गुरु अर्जुन साहब महाराज ने

सो तुमरी गत मित तुम्ही नानक दास बोलना जी सतनाम श्री वाहिगुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। वार श्री भगौती जी की पातशाही दसवें प्रथम भगौती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरे कर नौ निध्या विताए सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब सब थाई हुए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ दिदार का ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु। पंजा प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई तेग वाही देख के अंडठ कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु। जिन्ना सिंघां सिंघणियां धर्म हेत शीश दिते बंद बंद कटाए खुपरियां लुहाइयां चरखियां ते चढ़े आरियां नाल चिराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सवासां संग निभाई तिना दी कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु। प्रथमें सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु। वाहिगुरु वाहिगुरु चेते आवे चेते आवन का सदका सर्ब सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रियायत देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी वाहिगुरु। सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसा दान भरोसा दान दाना सिरदान नाम दान श्री अमृतसर जी दे इशनान चौंकियां झंडे बंगे जुगो जुग टल धर्म का जयकार बोलो जी वाहिगुरु। सिखा दा मन नीवा मत उची मत दा राखा वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो श्री ननकाणा साहिब होर गुरुद्वारियां गुरुधामा जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दे दान खालसा जी नूं बख्शो। हे निमाणियां दे माण निताणियां दे ताण न्योटियां दी ओट सचे पिता अकाल पुरख धन धन शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज आप जी ने उद्दम बख्शे हफ्तावारी समूह बीबियां माइयां भैणां वल्लों रल मिल के आप जी की तुरकी बाणी के कीर्तन कीते गए सतगुरु सेवावां करदियां होईयां भुल्लां दी खिमा बख्शनी मेहर करनी सभना परिवारां नूं चढ़दियां कला तंदुरुस्तियां बख्शनियां पढ़ी सुनी बाणी दा भाव संगत दे परिवारां दे हिरदियां ते वसाउणा संगत दियां तिल फुल पिटावां सेवावां दर ते प्रवान करनियां सभना परिवारां विच आपसी एकता इतफाक प्रेम भरोसे दियां दातां बख्श के नवाजना आप जी के हजूर कड़ा प्रसाद दी देगा जरै दर ते प्रवान होवे करो कृपा अपने इलाही फरमान बख्श के कृतार्थ करो अखर वादा घाटा भुल चुक माफ करनी सरबत दे कारज रास करने से प्यारे मेल जिन्हां मिलिया तेरा नाम चितावे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहराया गया पहिय अकाल की तबै चलायो सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की जो प्रभ को मिल बोच है खोज शब्द में।

सुख सहज आनंद घने गुरपुरा पूरी जाकी बाणी अनक गुणा जाके जाहे ना गणे। सुख सहज आनंद घने गुरपुरा पूरी जाकी बाणी अनेक गुणा जाके जाहे ना गणे। रहाओ सगल सरंजाम करे प्रभ आपे पए मनोरथ सो प्रभ जापे। अर्थ धर्म काम मोख का दाता पूरी पई सिमर सिमर विधाता। साध संग नानक रंग माणिया कर आया पूरे गुरियाणिया। साध संग नानक रंग माणिया कर आया पूरे गुर आणिया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कुटान कुटान शुकराना अकाल पुरख वाहिगुरु का। वडभागी हो सतगुरां की पावन संगत विच आप जी ने हाजरियां भरिया ने। हर सोमवार नूं बीबियां भैणां रब्बी बाणी दे कीर्तन 11:30 बजे तो लैके तकरीबन 1:30 बजे तक सेवा करदियां ने। सो आप जी हाजरियां भरिया करो। कल मंगलवार नूं 11:30 बजे श्री सुखमणी साहब के पाठ प्रारंभ होणगे। तो यह भी सेवा जी है हर हफ्ते बीबिया भैणा रल मिल के कर दियां ने। तो आप जी हाजरियां भरिया करो। कल ऐतवार गुरद्वारा साहब की नवी इमारत का जिहड़ा नींह पत्थर है वह पंजा प्यारिया की अगवाई के रखा गया। तो बड़ी चढ़ती कला विच संगतां का हुंगारा जिहड़ा है वह प्राप्त होया। तो सतगुरु कृपा करन आप संगतां के संयोग के नाल यह जिहड़ा वड्डा कारज है इहनू नेपरे भी चढ़ाउण। तो महाराज सच्चे पातशाह की बख्शिश सदका सारे कार्य बड़ी चढ़ती कला के नाल संपूर्ण जिहड़े ने कल होए ने। तो इसी संबंध में गुरदेव के शुकराने वजों शामा नूं समागम चलते ने। 7:30 बजे तो 8:30 बजे तक हजूरी रागी श्री दरबार साहब भाई लखविंदर सिंह जी जिहड़े ने वह हाजरियां भर के संगतां नूं रब्बी बाणी के कीर्तन सरवण कराउंदियां ने। तो आप संगत नूं बेनती आप जी ने अपने परिवारों समेत हाजरियां भरनियां। कल अज अते कल दी उहनां दी हाजरी है। परसों फिर उन्होंने 23 तरीक नूं वापस चले जाना है। तो शामी 7:30 बजे तो लैके 8:30 बजे तक भाई साहब कीर्तन करते हैं। 9 बजे तक दीवान चलते हैं। तो आप सारिया संगतां नूं सद्दा पत्र है भाई आओ सतगुर की अमृतमई बाणी दे नाल गुरु कीआं विचारां दे नाल जुड़ो जी। तो इत्थे ही दुपहर दे इस दीवान की समाप्ति है। तो आप जिन्हां जाण वालियां संगतां ने गुरु के लंगर तैयार ने आप जी ने प्रशादा पाणी छक के जाना जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।